सफल हो, मन में लायो पाओ सुख सहज आनंद गाना गुरबाणी गाव पाए। सुख सहज आनंद गाना तब जपते हैं दुख जाए।

कवि कहते हैं सुजान चंद मैं कवि हूं, हिंदुस्तान ते राज है औरंगजेब बादशाह का, जिसने ऐलान किया है सारे हिंदुस्तान दे विच कोई राग नहीं गाएगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई कविता नहीं गाएगा, सास संगत तेरी, कोई सुनिया सुनाइया गल्ला नहीं, एक इतिहासक सच्चाई।

आज तेरे चेहरे को लगदा तू बड़ा खुश इंज लगदा जिवें तेनू कुछ मिलिया।

से बादशाह का घर नहीं और वो था है आनंदपुर साहब आपको सब जिसे कलगियां वाला बादशाह है तो मैंने भी सुने वो कवियां का बड़ा मान करके सुने उन्ना बवंजा कवि रखे हैं सुजान चंद मैं तेरा दोस्त हां चंगा मित्र वही है जड़ा चंगा रहा।

फिर कहने रहा महाराज मेरे मन में चैन है। तो संतगुरु जी फिर कहते हैं तेनू आख्या भज जा

लौटना जा रहे हैं। क्यों? जो मेरे गुरु ने किया है सुजान चंद दौड़ जा, ये दौड़ना पे है।

बड़ी सेवा करता है, पता नहीं कितना आए, बोलना काटा है, सिमरन करता रहता है,

मेरे नूह के पेट में बड़ा दर्द, चल मेरे नाल कौन को दवाई दे, फिर सुजान चल सोच ले, जे माई नाल जावां तो फिर दर्शन ही ना, अगे बड़ा तरस है, पता नहीं और कितना तरसना पवेगा, संगता एक लंघदी है।

माता सेव को अपनो प्यार सी सेव निमा जिरा अमृत छकेगा वो मेरा पुत्र होगा, मैं उसका पिता ते तुसी उसके माता हो। आओ माता सेव को दी गोद विच बैठ कलकियां वाले पिता का प्यार लेना है।

दूसरे पादशाह श्री गुरु अंगद देव जी महाराज का है। गुरु साहब जी कहते ने तिना दरियावां सियों दोस्ती मन मुख सच्चा नाम। दोस्त कहो जिहा बनाना चाहिए गुरु साहब जी दसदे ने कहंदे ने दोस्ती करनी है

एक ओ सज्जन जिन्हों कच्चा सज्जन कहते, कच्चा दोस्त जेड़ा चंगे पासे तू माड़ा पासे ले जाए, ओनू कहते ने कच्चा। कोई गुरुद्वारे, कोई मंदिर, कोई सत्संग जा रहे है, ते रस्ते विच मिल पवे ते आखे छाट गुरुद्वारे मंदिर की जाने, आपा किधरे दूसरे पासे चलते। ओ कच्चा सज्जन, कच्चा दोस्त। पक्का सज्जन ओ जे कोई माड़े पासे जांदा होवे, ओनू आखे छाट माड़ा पासा, चल आपा कीर्तन सुनी, किसे चंगे महापुरुष कोल बैठ के रब दी गल सुनी। माड़े पासे तू जेड़ा मोड़े, ओ पक्का सज्जन, पक्का।

जोगी कहन लगा एक और फिर जाओ उसनु कहो मेरे लंगर विच आके प्रसादा छके मैं 10 साल का स्वर्ग देवांगा। जोगी दे चेले फिर पाए तिलकू दे घर गए बुआ खड़काया पाए तिलकू जी ने बुआ

किन्नी शक्ति दा मालिक है जिड़ा मेरे आखे नहीं लगदा जोगी आसन ला के बह गया रिधियां सिद्धियां प्राप्त सन उन रिधियां सिद्धियां दे सद

पुत्र भाई तिलकू उन्हां दा मन गुरु नाल जुड़े है ते जिदा मन गुरु नाल जुड़िया होवे एहो जिहा चीजां लागे नहीं आंदियां। ओ भूत प्रेत बथेरा रौला पांदे ने भाई तिलकू बुआ कोल लंगर खा नहीं तो तेनू मार देंगे। हुण जिस गुरु दी ओट भाई तिलकू ने लई ओ गुरु भाई तिलकू दी रखिया कर रहे है उन्हां भूतां प्रेतां नूं कोई

दरवाजा खोल जोगी आप तेरे द्वारे आया पर हुन पाए दिल को निबुआ नहीं।

जोगी आप तेरे द्वारे चल के आया है, चल के लंगर छक। मैं तेनु सारी जिंदगी दा स्वर्ग दिया। भाई साहब ने बोला।

उठ के बुआ खोले। गुरु दी गलती गुरु दे प्यारे अपनिया जाना वार देंदे, गुरु दे चरणा तू कुर्बान हो जांदे ने। गुरु दा वास्ता पाया ते सिख किवें बैठा रहिंदा। बुआ खोले सामने पाए तिलकू दे।

जोगी जेड़ा सी कह लगा भाई तिलकू तेरा गुरु केड़ा जेदे चरणा दे बदले तू स्वर्ग दी परवाह नहीं करता जिदे चरणा दे नाल तू मन जोड़े है।

इस जोगी ने पाई दिल को दिनाल पाई, पाई दिल को गुरमुख है। जोगी ने भी तपस्या की थी पर मन रिदियां सिद्धियां विच लग गया, हुण पाई दिल को दिनाल दोस्ती की थी ते पाई दिल को रिदियां सिद्धियां दे रस्ते तो हटा के सच दे रस्ते वाल लै तुरिया। इस वास्ते सहबा ने कहा दोस्ती करनी उन्हां नाल करो।

तिनस्यों क्या कीजै दोस्ती जे आप भुलाए करतार उन्हां नाल की दोस्ती करनी जिन्हां नूं परमेश्वर ने भी भुला दिता है। इस करके दोस्ती ओहदे नाल करो जिहड़ा

करो जिथे निवास सको ते निभ सके दोस्ती ओदे नाल करो जिदे कोलो नुकसान ना उठाना पवे ए ठीक है के भला करो जरूर पर जे भले दी उम्मीद करनी ए भी मेरे नाल भला करे तां उत्थे भला करो जिथों

जोगी कह लगा दिल को तू अपने गुरु की सिफत बड़ी की थी। बड़े गुण दसे ने अपने गुरु ने पर एक गल दस तेरे जिस गुरु विच इनिया सिफता इनिया वड़ियाईया ने।

40-45 साल का गभरू नौजवान गुरु मेरी उम्र 100 साल तो उत्ते रिधियां सिधियां दा मैं मालिक नौजवान गुरु जाके मथा टेकांगा ए नहीं हो सकता मैं वापस चलिया नाल आए लोगों ने समझाया अज तू अगे आ गए दर्शन करके जा दिल करेगा मथा टेकी दिल करेगा ना टेकी तेनू केड़ा किसी ने धक्के नाल फड़ के मथा टिकाना लोगों ने समझाया ताए जोगी फिर तुरिया ए अमृतसर दे लागे पहुंचे उधर तन गुरु अर्जन साहब अंतरयामी सिखा नु कहा एक शैमैना लगा दियो।

अचानक तूफान आ गया। लोकी सारे डर गए, मलाह नूं कहन लगे बचण दी कोई उम्मीद है, तूफान बड़ा भयानक है, बेड़ी भी डोलन लग पी, इस तरह लगदा है हुण डुबी कि हुण डुबी। मलाह कहन लगा जे कोई आदमी अपनी बलि देवे ताए तूफान बंद होवेगा। हुण सारे लोग एक दूसरे वल देखन लग पे कि केड़ा बलि दिंदे। मैं भगवे कपड़े पाए सन,

लगदा भी कोई साधु ना एदा कोई अगे होना ना कोई पिछे। जे मर भी गया ता केड़ा किसने रोना है, इनू चुके सुट दे। जदू सारे मेरे वाल देखन लग पे ते मैं समझ गया कि इना लोकां ने मैनू चुक के जरूर सुट देने। ओही गल हुई, सारे मेरे दुआले हो गए। पहला ते कहन लगे, साधु जी महाराज तुसी पानी छाल मारो, बलि दियो, संसार ते त्यागिया ही हुण शरीर ते आग ते साडी रखिया करो। मैं बथेरा रौला पाया पर उन्हां लोकां ने मैनू चुक के समुंदर दे विच

मैं ता किसे तरह बनने लग गया, पर मेरा वो कान किसे मच्छी या किसे जंतु ने काट ले। ओ देवे जी को सोने दा मुंदरा भी सी। जदू इन्नी गल जोगी ने कही ता गुरु साहबान ने कनात दे थलियों हाथ दूसरे पासे कीता ते नाले किया।

जिनू गुरु ने अपने गल दे नाल आया वड्याई दिती निहाल हो गए जोगी भी हुण गुरु दे चरणा दे नाल जुड़ गया सारा संग सारे दर्शन कीते कुछ दिन अमृतसर रह के भाई दिलकू ए जोगी इना सारिया लोकां दे नाल गुरु दी सिफत करदे होए वापस गढ़ शंकर नूं तुर पए वड्डी हूं वड्डा अपार तेरा मर्तबा रंग पुरंग अनेक न जापन करतबा ए अकाल पुरख तू बड़ा वड्डा है तेरे रंग कोई नहीं जान सकदा तेरा अंत कोई नहीं पा सकदा भाई दिलकू दरिया सी गुरमुख सी जोगी ने दोस्ती की थी जोगी तर गया इस वास्ते गुरु अंगद साहब कहंदे ने उन्हां दरियावां गुरमुखां भले पुरशां नाल दोस्ती करो जिन्हां दे दोस्ती दे नाल जिन्हां दे साथ दे नाल तुहाडे विच चंगे गुण आण तुहाडा

ने अति सिस्ती सी फरीद नू। एक गल याद रखना, मां का इंजेक्शन लगा होया बच्चा रब का रूप बन सकता, ते जे मां ने चंगा इंजेक्शन नहीं लाया ते बच्चा महान पापी ते महान डाकू बनेगा। कई सतगुरु पातशाह साहब श्री गुरु रामदास साहब पातशाह जी ने लिख दिता।

नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया। बिन जिहवा कहां को बगता, बिन श्रवना कहां को सुनता। बिन नेत्रा कहां को पिख है, नाम बिना नर कहीं न लिख है। बिन विद्या कहां को पंडित, बिन अमर कैसे राजमंडित।

साहिब गुरु नानक देव जी बचन करते हैं, ध्यान देना बाणी में पातशाह आखदे हैं।

0: जल बिन कुंभ न हो। ज्ञान का बधावन रहे गुरु बिन ज्ञान न हो। ओ गुरु बिन ज्ञान न हो।
1: पापा जी ताड़ी इस छबील दे आसरे साडा पेंडा कटिया जांदा
2: आसरा उस आधार दा मैं देख सेवादार हां।
1: खुश रहो बाबा जी खुश रहो।
2: आप उधर ले पी। ओ ले पी।
3: जल पाया परमेश्वर पाया
2: अब मोहे जलत राम जल पाया। राम अधिक तन जलत बुझाया मन मारण कारण बन जाइए सो जल बिन भगवंत न पाइए।
4: सो जल बिन भगवंत न पाइए।
2: हाँ बेटी।
4: बाबा जी असि भी मन में जल लग रहे हैं थोड़े को हजारों यात्री आते जाते शायद तुम्हें कुछ पता हुए।
2: कादा पता
4: ए मेरे पति ने इन्होंने सुपने विच एक थां वेखी सी पानी की एक छपड़ी आदि कंडे ते बेरी का दरख्त ते बेरी ते कां बैठते ने
2: छपड़िया ते कई ने ते बेरी दे दरख्त भी बेअंत हैं।
4: नहीं बाबा जी आज बेरी ते इको ही होगी जिस तो कां उड़ के छपड़ी च डुबकी लैंदे ने ते चिट्टे हो उड़ जांदे ने।
2: चिट्टे हो उड़ते जांदे ने।
3: हां बाबा जी ते नाल ही आवाज आ रही सी
4: कागू हंस करे।
2: कागू हंस करे। कागू हंस कर ये तो गुरु नानक देव जी की बाणी है। तुसी इंज करो सिर्फ गोंदवाल चले जाओ उठे गुरु अमरदास जी का दरबार है गुरु नानक की अलाई बाणी का सोमा।
4: गुरु अमरदास।
2: हां बेटी उन्होंने हर चीज का ज्ञान है। उन्होंने दर्शन करदे ही तुहाडे पैर अपने आप तुहानू उस मंजिल वल लै जाणगे जिस मंजिल तुहाडे दिलां च तांगे।
4: किन्नी दूर है गोइंदवाल।
2: इथों थोड़ी दूर दरिया का पत्तन है उथे बेड़ी पैंदी है बस दरिया पार दे गोइंदवाल।
4: अच्छा बाबा जी असि चलने
2: परमेश्वर भली करेगा। कबीर सेवा को दोहे भले एक संत एक राम। राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम।

थारे ही जीव अकाल पुरख वाहिगुरु ने कठे भेजे हैं। ए संसार एक बाजार है जिथे जीव वणज करन लई आए, सौदा करन लई आए। जिन्हां ने इथे आके सच दा वणज कीता, सेवा सिमरन परोपकार कीता, ओ ता लाह खट के गए। ते जिन्हां ने इथे आके निरी माया दी ही खेड खेडी है, हजूर कहंदे हन ओ अपना मनुच्छा जन्म एवें व्यर्थ गवा के जाने। क्योंकि संसार एक रंग भूमि है जिथे हर जीव आपो अपनी खेडां विच रुझिया होया। हजूर दी बाणी बख्शिश करदी है, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगत सगल जगत। दाई दाया कहंदे हन खिडाउन वाले नू, दिन अते रात इस मनुख नू खिडा रहे हैं और सारा जगत इस विच खेड रहे हैं। और जेड़ी जेड़ी भी कोई खेड खेड रहे हैं, अकाल पुरख वाहिगुरु हर एक दी खेड नू बड़े गहो नाल तक रहे हैं, बड़े गहो नाल लिखिया जा रहे हैं। जिन्हां ने इथे आके नाम दी खेड खेडी, ओ ता निरंकार दे चरणां दे नेड़े हो गए, उदी प्रसन्नता दे प्राप्त हो गए। जिन्हां ने मेरी माया दी ही खेड खेडी है, ओ मालिक दी बख्शिश तो दूर हो गए। हजूर दा वचन है पवन गुरु, पानी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत। चंगे आईया बुरे आईया वाचे, धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेरे के दूर। जिन्नी नाम ध्याया, जिन्हां ने इथे आके नाम दी गल ना कीती, नाम दा वणज कीता, ओ लाह खट के जानगे। इसलिए हजूर दी बाणी बख्शिश करदी है, भई मरण दे बाद भी कोई जीवन है, गल मुक नहीं जांदी। हजूर दी बाणी बख्शिश कर रही है कि साकत पुरशां दा, पापियां पुरशां दा भी मरण दे बाद जीवन है, गुरमुखां दा, सतपुरशां दा, महापुरखां दा भी जीवन है। पापी दा जीवन कैसा है? हजूर दी बाणी बख्शिश करदी है, भई पापी साकत पुरुष जो है, ओ पहला ता अपना मनुच्छा जन्म ही नरक बना लैंदा, ते जदों अपनी औधी समाप्त करके जांदा है, उस लई कुंभी नरक फिर तैयार है। जम जम मरे मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पई है देश लम्मे, तिन्ना मुख डरावने, ए साकत पुरशां लई है। फरीदा तिन्ना मुख डरावने, जिन्हां विसारियो नाओ, एथे दुख घनेरिया अगे थोर ना थाओ। पापी कर्म कमावदे कर दे हाय हाय, नानक जो मथन माधानिया त्यो मथे धर्म रह। ए ता है साकत पुरशां दा जीवन। ते गुरमुखां दा जीवन कैसा है, भले पुरशां दा जीवन कैसा है? हजूर कहंदे हन के अंतर गुर आराधना, गुरमुख जन जो हन ओ मन करके भी जपदे हन और रसना द्वारा भी जपदे हन श्री वाहे गुरु, और नेत्रां द्वारा गुरु का दर्शन करदे हन, कन्ना द्वारा गुरु की बाणी श्रवण करते हैं। इसलिए ऐसे गुरमुख नू किथे निवास मिलता है? हजूर ने मोहर लगा दी, अंतर गुर आराधना, जेवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना, सरवणी सुनना गुर नाओ, सतगुर सेती रत्या। रत्या तो भाव है सतगुरां दे चरणां विच जो जुड़ते हैं, उन्हां नू किथे थां मिलती है? सतगुर सेती रत्या, दरगह पाई है थाओ, दरगाह विच भी निरंकार उन्हां नू अपने चरणां विच वासा बख्शदा है। इसलिए जीव सारे ही आए हन, पर जो नाम दा वणज करके जानदे, उन्हां दा मुख एथे भी उजला है ते दरगाह विच भी उजला होएगा। हजूर दी बाणी बख्शिश कर रही है।

हजूर दी बाणी बख्शिश कर रही है कि जिन के पल्ले तन वसै तिन का नाम फकीर। फकीर तो भाव किसे संत महात्मा दा नाम नहीं, फकीर कहदे हन मंगदे नूं। मंगते नूं कोई कितना भी दान कर देवे ओ मंगना नहीं छड़दा, फिर मंगदा है। ते तन दा लोभी भी कृष्णालु पुरुष भी जितना भी तनी हो जावे ओ फिर मंगेगा, फिर हर एक दी खुशामद करेगा भाई किवें मैनूं तन प्राप्त हो जावे। हजूर कहंदे हन कि ज्यो पावक ईधन नहीं द्रापे, जिस तरह अग्नि दे विच लकड़ां पाई जाओ कदी ओ नहीं कहंदी भाई मैं रज गई हां, ऐसा ही तृष्णालु पुरुष दा जीवन है कि ओ हर एक दी खुशामद करदा है, कहंदा है मैनूं किवें धन प्राप्त हो जावे। पर हे वाहिगुरु, जिन्हां दे हिरदे विच तेरा नाम वस गया ना ओ गुणा दे खजाने हो गए, क्योंकि सच्चे साओ ओ हन, सच्चे तनी ओ हन जिन्हां ने एथे आके नाम दा वणज कीता जपया श्री वाहिगुरु। इसलिए हजूर बख्शिश करदे हन सच तन वणजो।

भाई शाह भाई गुरदास जी आप कहते हैं कि इस संसार विच दो प्रकार दी संगत है। नाम दोहां दा संगत है। एक संगत प्रभु दे नाल मिलाप करा देंदी है, एक संगत नरकां दा अधिकारी बना देंदी है। और कुछ दृष्टांत दे के आप समझा रहे हैं। भाई साहब कहते हैं कि काहू दिशा के पवन गमन के बरखा है। एक हवा पवन ऐसी आउंदी है जो बदलां नूं ले आउंदी है, बदल बरसदे हन, जी जंत हरियावले हुंदे हन। एक हवा ऐसी आउंदी है जो बदल बरसन वाला हुंदा है, बदलां नूं उड़ा के ही ले जांदी है। एक हवा सुख रूप है, एक हवा दुख रूप है। इसे तरह आप दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं धरती दे जल दा। आप श्रवण करो।

ऐसा निर्मल जल होंदा है, रोगी शरीर नूं अरोग कर देंदा है। किसे धरती दा ऐसा कठोर जल होंदा है, अरोग शरीर नूं नित दा रोगी बना देंदा है। नाम दोहां दा ही जल है, एक जल सुख रूप है, एक जल दुख रूप है। भाई साहब तीसरा दृष्टांत दे रहे हैं।

0: कहो नानक सब ते वडियाई, कोई नाम न जाने तेरा। मैं तन जबान तू है मेरे स्वामी, मैं तुझे आगे अरदास। मैं होर थाओ नहीं दिते करो बिनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पाते। सुनी अरदास स्वामी मेरे, सर्ब कला बनियाई। प्रगट भई सगले जुगे अंतरे, गुरु नानक की वडियाई।
1: आओ अपनिया बिस्तियां कागर करिए। दसना ते सतनाम श्री वाहे।

0: बनाई राजपथ रत नहीं दिन चार तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवा
1: अजनु सब रच दिखयो ना हन अजहू सब